0: 才有话就说路 FM 不打扰
1: सोनु FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
2: साउन्ड चेक सोनु FM स्टुडियो टाइम
3: इट्स 6 PM बिहान 6 बजे
1: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोनु दुकुन नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: नमस्कार तथा सुप्रभात काया कैरनमा तपाईलाई साथी सम्झना महर्जनसँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ।
1: आज 2083 साल असोज 27 गते मंगलबार, सन् 2026 अक्टोबर 13 तारीक असोज शुक्ल पक्षको तृतीय तिथि।
2: काया कैरन का साथमा
1: किसान पाइप प्रोडक्ट्स प्राली
2: राष्ट्र कुसान किसान
1: अ कम्प्लीट पाइपिंग सोल्युसन्स।
0: काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट।
1: बूढ़ी गंडकी को बाढ़ी ले 200 घर बगे, ओत खोलते प्रभावित 5000 घर दूरी अंधकार में, चून उपत्यका को पदयात्रा स्थगित।
0: इस वर्ष मुख्य चाड़ पर्व में अत्यावश्यक वस्तु को भाव अचाटी बढ़ा, उपभोक्ता मर्का में वर्षभर भित्रने रेमिटेंस को झंडे 25% भदौदेखि कार्तिकसम्म भित्रने गरेको तथ्यांक।
1: प्रभावित प्रस्तावित राजदूत को सुनवाई शुरू, सुनार विरूद्ध महिला हिंसा र थापा विरूद्ध पीआर को आरोप।
0: भारत को जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने, प्रदर्शन का लागि 3 नया ठाउँ तोकिए।
1: र विश्वकप क्रिकेट लीग 2 मा नेपालले आज ओमान सँग खेल्दै।

0: ใส่เห็ดใส่ปาลิ
1: युचार पर्व में यूरोपेंस प्रस्तुत करता है रंगीन चक्कर बरसीन से उपहार रुपटास हजार को यूरोपेंस को खरीद वापस हो लकी ड्रॉ कूपन अनिपाउड हो स्टीम बच्चों एसी एक साल डबल डोर फ्री इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल चॉक अनिबंपर प्राइस वापस हो एक जोड़ी को लागी बाली टूल यूरोपेंस घर मात्र ही ना रंगाऊन हो सपना बनी

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: टाइम चेक सोलू एफएम इन स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

से प्रदेश स्तरीय स्थित तथा रोजगार मेला 2083 युवा श्रम तथा रोजगार मंत्रालय को आयोजना में सोनितप सुंदर नगरपालिक क्षेत्र में शीत तथा रोजगार को पूर्ति में रहकर युवा महिला तथा इच्छुक व्यक्ति योग्य कामदार व कर्मचारी को खोजी में रहकर रोजगार दाता सहभागी होना अनुरोध कर दर्ता करने प्रक्रिया वेबसाइट में जानूस https.gov.com/

0: 三雀。三雀。Solo FM Studio Time。
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका पांच सोलु खुम्बू।

0: শ্রী ভাগুরা কষ্ট বিচার জানো রেডিও নেটওয়ার্ক।
1: तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। अब सुन्न सक्नुहुन्छ चित्रलहर।

0: Sign check. Solu FM, studio time.
1: It's 1 PM. Dinsako ek bajera.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू।

0: मेट पांडा मैराथन को मिति परिवर्तन संबंधी सूचना।
1: गत 2026 अगस्त 20 में आये विनाशकारी बाढ़ी पहरो ठूल जनधन को क्षति प्रति हमी गहिरो प्रकाशित छी राष्ट्रीय विपत्ति को घटी गंभीरतापूर्वक ध्यान दी उक्त मैराथन को मिति सारे हो। इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति देखा अटुट सहयोग विश्वास को हमी संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नया मिति में इस मैराथन भव्य र सफलतापूर्वक संपन्न हामीलाई थप सहयोग सल्लाह तथा शुभकामना प्रदान गरिदिनु होला भने हार्दिक आग्रह गर्दछौ। रेस पांडा नेटवर्क संघको सहकार्यमा यस आयोजक समितिले आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 मा आयोजना गर्ने भनेको रेड पांडा म्याराथनको मिति परिवर्तन गरी 2026 नोभेम्बर 28 मा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको बिहरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ।
2: अध्यक्ष निमा टेन्डुप शेर्पा, हिमाली स्वास्थ्य र वातावरण सुभाष तोलुखुम्बु।

0: सीधा खुरा कष्ट विचार
1: जानो रेडियो नेटवर्क
2: अहिले दिवसो को तीन बज्यो
3: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो
2: राष्ट्र को शान किसान
3: अ कम्प्लीट फाइटिंग सॉल्यूशंस